0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड
1: हामी जन्मदात नै सिकारी हुँ सिकारी
2: पुरै दैलेख मलाई चाहियो
3: VFX सिनेमाज कुराही दस नारायणपुर सौडी कुला दाङमा एक्शन नायक विराज भट्टद्वारा अभिनीत भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र रामना

0: सेवा
1: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा
2: साथै इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सिस्टोस्कोपी इको कल्पोस्कोपी सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली सडक विभाग ओह्रालो घोराई दाङ फोन नम्बर 0825 63 218
4: मध्यपश्चिम ज्याङ ज्याक यति बेला बिहानको 10 बजेको छ।

प्रोडक्टहरु कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल विथ बिस्की हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस अडगुरी

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट विटा मिल्क बटर फैट क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोटोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: Hello, from America, Waka Waka, Washington DC, Josh W. Bush, hello, hello, hello.
1: त्यसै गरी भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथा चलचित्र पहाड।
2: एक जबरदस्त कहानी है।
3: और टाइटल क्या है फिल्म का?
2: वेलकम टू द जंगल।
4: स्वर्गद्वारी चलचित्र मन्दिर घोराईदाङमा भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ हिन्दी कथानक चलचित्र वेलकम टू द जंगल।
5: हमें जाने दो मालिक, हम सब भांड है, रोजी रोटी के लिए काम करते हैं।
6: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है।
5: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो?
7: सूर्य को विकिरण बढ़ते आंखा कमजोर होते ग्लोबल वार्मिंग आँखामा रोग अरू थुप्रै समस्या तर समाधान पशुपति आई केयर सेन्टरमा विज्ञ आँखाका डाक्टरहरूसँगै आँखा चेक गर्ने अत्याधुनिक उपकरणहरू पनि छन्। हाम्रो आँखालाई सुरक्षा दिने उच्च क्वालिटीका पावर ग्लास र फ्रेमहरू उपलब्ध छन्। अब ढुक्क हुनुहोस्, पशुपति आई केयर सेन्टरले तपाईँको आँखाको रक्षा गर्नेछ। पशुपति आई केयर सेन्टर कपासी दान। सम्पर्क नम्बर 9843008804 9843008804 www.pashupatiicare.com।
8: मध्य पश्चिम जाइन च्याक यति बेला दिउँसोको 2 बजेको छ।

0: बजाज एक्सचेंज मेला में जाम मई दिन आपको पुरानो बाइक स्कूटर लिएर आउनुहोस् र न्यू बजाज बाइक को साथ जाम मई लिएर जानुहोस् जाम मई वैल्युएशन जाम मई कैश डिस्काउंट
1: एक्सचेंज डेट यही असार 4 गते देखि 16 गते सम्म
2: स्थान राप्ती अटो इंजीनियरिंग बजाज शोरूम शहीद गेट गुराही दाम
3: संपर्क फोन 082-562-423 संपर्क मोबाइल नंबर 98-578-30-151 98-478-33-133 र 98-686-37-244

मा उहाँको कार्यालयहीन रोल्पामा पाँच महिनाको अवधिमा प्रहरीले 56 रोपनीमा लगागिलेको अफिम औ गाँजा खेती नष्ट गरिराखल 2082 फागुन से 83 असार 12 गतेसम्म रोल्पाका विभिन्न स्थानमा लगागिलेको अफिम औ गाँजा प्रहरीले नष्ट गरिराखल 2082 फागुन 30 गते रोल्पाका परिवर्तन गाउँपालिका 4 ताता पानीमा एक किसान से उत्पादन करलक 700 बुटा अफिम नष्ट गरिल रह 2082 चैत्र 24 गते थबाङ गाउँपालिका 4 गुरासे लेक थुर्पू जालकी छोरबांग ओ लुटांग लगायत के स्थान में अफिम खेती करलक कैकना गोप्य सूचना का आधार में जिला प्रहरी कार्यालय रोल्पा का प्रहरी से भारी मात्रा में करीब 55 रोपनी जमीन में लगागिलक अफिम नष्ट करगिल रह अस्तंक 2083 असार 12 गते शुक्रवार का दिन में त्रिवेणी गांवपालिका 6 स्थित एलानी पाखो जमीन में अपनेजो जमलक गांजा का बिरूआ कना बाकना सूचना का आधार में स्थानीय प्रहरी से टोली एक रोपनी बराबर का जग्गा में अपनेजो उम्रलक करीब 2500 गांजा का बोट नष्ट करगिलक जिला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी नायब निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी सुनिल थापा नेपाली जानकारी दिएरखल छिटी समयमा धिर आर्थिक आमदानी गर्न उद्देश्यले करबेर अफिम खेती होर आकर्षित हुइना जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा बहादुर छेत्री बटुवा रखल मनसून जन्य विपद बाढ़ी पहिरो और डुबान का कारण उत्पन्न हुईसेकना जोखिम में पर्लक नागरिक का खोज उद्धार और राहत कला का देशभर एकीकृत संयंत्र रहन तैयारी अवस्था में धरगिल्बा राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण का समन्वय में मनसून जन्य विपद से हुईसेकना जनधन का क्षति न्यूनीकरण कर मनसून पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रीय कार्य योजना 2083 कार्यान्वयन अन्तर्गत एकीकृत विपद व्यवस्थापन संयंत्र रहन उच्च तैयारी अवस्था में धरगिलक हो प्राधिकरण का प्रवक्ता शान्ति महत्से मनसून अवधि में बाढ़ी पहिरो डुबान नदी कटान तथा चट्यांग लगायत का विपद का प्रभावकारी पूर्व तैयारी प्रतिकारी और राहत व्यवस्थापन कलाक नेपाली सेना नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हन खोज तथा उद्धार कलाक तैयारी अवस्था में धर्किल लग बटुवा रखल वहां से यी वर्ष देश का अधिकांश क्षेत्र में औसत से कम वर्षा होना प्रक्षेपण करगिल सदे भौगोलिक संवेदनशीलता और स्थानीय मौसमी अवस्था का कारण बाढ़ी और पहरो को जोखिम हन ध्यान में धईकन आवश्यक पूर्व तैयारी करगिलक जानकारी दे रखल यी वर्ष का मनसून अवधि में देशभर 51,868 घरदूरी का 2,26,661 जना प्रभावित हुईसेकना अनुमान करगिल बा प्रभावित मध्य 51.10% महिला और 48% पुरूष रहना आकलन करगिल बा ओ कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय से ऐना साउन महिना भित्र झण्डै 2,10,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल भित्रिना तयारी गरिराखल मुख्य बाली धान का लाग थप आवश्यक पर्ना मल का आपूर्ति सुनिश्चित गर मन्त्रालय से विभिन्न माध्यम से मल आयात प्रक्रिया अगाडि बढ़ागिलक जानकारी दिराखल सरकार जी2जी सम्झौता अन्तर्गत भारत से आयात हुई लागलक 30,000 मेट्रिक टन यूरिया मल साउन का द्वासर हप्ता नेपाल आइपुग्न रहल अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेण्डर मार्फत विभिन्न देशले 1,80,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मध्ये 60,000 मेट्रिक टन डीएपी ओ 1,20,000 मेट्रिक टन यूरिया रहलबा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा मलको कालोबजारी वा अनियमितता पागिलसे उजुरी गर बिहान 7 बजेसे सन्ध्या 7 बजेसम्म हटलाइन नम्बर तथा क्यूआर कोड मार्फत गुनासो दर्ता गर्न व्यवस्था फेकै राखल पाँच बजे रेडियो मध्यपश्चिम खबर थारूवासक मध्यपश्चिम खबर अतरह काल संजापे थारूवासक मध्यपश्चिम खबर सुन सकने बाटी अखस्ता खबर मसे समाचार कक्ष कसकको संग्रहसँग मैसालिक राम चौधरी विधायटू रिडी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोखा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़नी, नसा, प्रसूति, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, बाल रोग, थायराइड, प्रेशर, सुगर, छाती, मुटु, नाक, कान, घाटी, टाउको, गैस्ट्रिक अल्सर, फिजियोथेरापी, दूरबीन विधिबाट ऑपरेशन लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण